आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाय
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 6:02 पर समय रहेगा प्रोग्राम सुप्रभात का। लेकर आपके साथ रहेंगे रविंद्र सिंह। सात बजे समय रहेगा हिंदी में मुख्य समाचार का। 7:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ होंगे संतोष राव। 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ रहेंगे रविंद्र सिंह 8:02 से। 9 बजे आप हिंदी में मुख्य समाचार सुनेंगे। 9:02 पर प्रोग्राम दिल की तराने गाने नए पुराने आपके साथ रहेंगे संतोष राव। 10 बजे समय रहेगा इंग्लिश में न्यूज हेडलाइंस का।

0: करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Have you heard? Census 2027 house listing operation has begun in Nagaland. These are informations to be collected.
2: Basic household amenities such as drinking water, LPG, electricity, sanitation and other essential facilities.
1: When the census officials visit your home, kindly provide accurate information and extend your full cooperation.
2: Your cooperation matters. Our census, our development.

0: वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते

0: को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी तो परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7-सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप

0: में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

Well, my dear friends, next kana na bata lam de abni khan ge aju puchu laga last real time traffic updates ani diye se Mohongula bra PHQ junction di chalaga heavy traffic thaki ase PHQ junction bra Mohongula di chalaga light traffic thaki ase jodi apni khan traffic avoid korbo mon ase kole Minister's Hill Jail Colony laga alternate route lobo paribo PHQ junction bra major junction de jalaga moderate traffic thaki ase major junction bra PHQ junction de uthia laga light traffic thaki ase DCP gate par Raju point de jalaga moderate traffic thaki ase Raju point par DCP gate de ahia laga light traffic thaki ase Raju point par census point de jalaga light traffic thaki ase census point par Raju point de uthia laga heavy traffic thaki ase jodi apni khan traffic avoid korbo mon ase kole census point and check laga alternate route lobo paribo aro paki high school junction to census point aro and check to census point ja ro ha soppi light traffic thaki ase to my dear friends it with thaki charge pujo laga last real time traffic updates apni khan soppi सब ट्राफिक लगा नियम माने के ना हेलमेट लगाए ना सीट बेल्ट लगाए ना चला बोले कारण कोई दिए से आज शाम लगा ट्राफिक अपडेट शुरू कर दिया बस शाम 3 बजे बोलो कि ना माय डियर फ्रेंड्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैसेज यदि अमी खान लगा लिसनर्स कान ब्रा रिक्वेस्ट करा अमी खान हुने अब किस्मत फिल्म ब्रा महिंद्रा कपूर आवाज थे म्यूजिक दिस ओपी नायर लिरिक्स SH बिहारी और तो की रिक्वेस्ट कोई ना लिखी से Kutsur from Zhu Valley Sakhababra. Aro tai tu git dedicate kuri diye se. Seal team. Besto, Dita, Vetsoto, Sapulu, Caretaker, Vetsuzu, Delazo, Bitao, Kutu, Motivator, Virazo, Team Supervisor, Mev Watermelon, Bitao Helper, Razulo High Beam, Ani banker aro tita cash holder kuna taikan sobke dedicated kuri diye se kuna likhi diye se honikna enjoy korbi mahindra kapoor awaste kismat filmra

0: My dear friends, moving on to the next request message. Amikani yate Dr. Zubin amikhan laga regular listener tai request koi laga geet amikhan huniyabo pyar to hona hi tha film bra Kumar Sanu laga waste music de say Jatin aru Lalit lyrics Vinod Mahindra aru tai to ke dedicate kuri diye se akhuzo jubake jame rukwele metha aru sob FM Trakman listeners kan ke koi na likhina pata idea se huni kina enjoy kribi Kumar Sanu awaste pyar to hona hi tha film bra
1: शेखर क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है
2: हाँ एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी बहुत सुंदर बहुत भोली और थोड़ी पागल भी लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है
1: उसे बताया क्यों नहीं
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है

ये तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

और अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिज्ञ, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का आसार है। और खेलों में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। यह पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और मार्सेलो अरेवालो और जेलेना ओस्टापेंको की जोड़ी ने विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीत लिया है। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: है प्रायोजित कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है इंदिरा जसूजा और वो इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ कोई 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरा काम है अस्पतालों में जाके इमोशनल सपोर्ट देना और लोगों को ढाढ़स बंधवाना, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि मनोबल के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप हर सप्ताह उत्सुकता से आईसीएस की इस वार्तालाप का इंतजार करते हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न कैंसरों के बारे में आपको जागरूक करती है। आज का हमारा विषय है प्रोस्टेट कैंसर। ये केवल पुरुषों से ही संबंधित है, पुरुष इसके बारे में ऐसे ही बात करना पसंद नहीं करते जैसे स्त्रियां स्तन के या बच्चेदानी के कैंसर में चुप रहती हैं और किसी को कुछ नहीं बताती। यौन संबंधी कोई भी वार्तालाप करने में हिचकिचाहट होना स्वाभाविक ही है, इसलिए हम आज खुलकर इसकी जानकारी आप सबको देंगे। आज का ये विषय मैं ऐसे भी विभाजित करती हूँ। पहला है, ये आपको जैसे क्वेश्चन है, प्रोस्टेट क्या है और ये कहाँ स्थित है। दूसरा है, इसका क्या कार्य है। इसके बदलाव, तीसरा है, इसके बदलाव के क्या लक्षण हैं। चौथा, उम्र के साथ इसका क्या संबंध है। पांचवा, कौन से टेस्ट से पता चलता है कि ये कैंसर है। छठा, इलाज किस विधि से हो सकता है। सातवां, इसका भविष्य क्या है, मतलब इसका प्रोग्नोसिस क्या है। तो पहला उत्तर जो हमने आपको क्वेश्चन किया था, प्रोस्टेट क्या है, ये एक अखरोट की तरह देखने वाला ग्लैंड ब्लैडर यानी के मूत्राशय के नीचे और रेक्टम मलाशय के आगे स्थित है। इसका भार लगभग 30 ग्राम के करीब होता है, जिससे कि उम्र के साथ बदलाव आता है, वो थोड़ा और भारी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि इसका काम क्या है। जैसे स्त्रियों में ओवरीज अंडे पैदा करती हैं, उसी प्रकार प्रोस्टेट एक तरल पदार्थ पैदा करता है जिसको हम सीमन या वीर रस कहते हैं, और इसी के जरिए स्पर्म पैदा होते हैं जो कि यौन संबंध से एक स्त्री को गर्भवती करते हैं। तीसरा था, इसके बदलाव के क्या लक्षण हैं। बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट में बदलाव आना बहुत स्वाभाविक है। हर बदलाव कैंसर को नहीं दर्शाता, उसके लिए कुछ और लक्षण भी होते हैं। प्रोस्टेट के स्वाभाविक बदलाव में है सूजन आना, रात को बार बार अपने को हल्का करने के लिए उठना, पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, उसका कम मात्रा में आना जिस कारण बार बार शौचालय जाने, कभी कभी यौन संबंध समय के वक्त पीड़ा का भी होना होता है। याद रहे, इन सब का मतलब कैंसर नहीं है, आयु के साथ ये बदलाव बहुत स्वाभाविक है, परंतु हम

कि कोई लक्षण होने पर ही जांच के लिए जाया जाए। जैसे मैंने कहा, समय समय पर इसका निरीक्षण करने से कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ी जा सकती है। अब हमारा अगला सवाल है कि किस टेस्ट से कैंसर का पता चल सकता है। एक बहुत ही आसान सा रक्त जांच का टेस्ट है, जिसे हम PSA यानी प्रोस्टेट एंटीजन टेस्ट कहते हैं। इसके लिए पेशाब का एनालिसिस भी किया जाता है। याद रहे, हर प्रोस्टेट का मतलब कैंसर नहीं है, जबकि जो कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ, डॉक्टर आपकी पूरी जानकारी लेकर ही इसके बारे में सोचते हैं। आपको यहाँ कुछ ऐसे कारण बताए जाएंगे जिससे हम कैंसर के होने की शंका कर सकते हैं। वे है, पहला, 50 साल की आयु से ज्यादा होना। इसका मतलब है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने की संभव हो सकती है। दूसरा है, परिवार में पिता, भाई या पुत्र को ये कैंसर होना। तीसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी में जीन बदलाव होना। जैसे हम स्त्रियों में स्तन कैंसर में BRCA1 और BRCA2 के बारे में कहते हैं, उसी तरह हम प्रोस्टेट कैंसर में भी इसकी बात करते हैं। चौथा, कुछ एक ये भी देखा गया है कि कुछ एक मुल्कों में इसकी संख्या ज्यादा है। पांचवा, धूम्रपान, जो कि एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। धूम्रपान को हम बहुत महत्व देते हैं क्योंकि ये हर कैंसर का कारण बन सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं इलाज पर, जो कि निर्भर करता है सबसे पहले कितनी जल्दी पकड़ा गया है, क्योंकि अगर वो जल्दी पकड़ा जाता है, कोई भी कैंसर जल्दी पकड़ा जाता है, तो उसका निदान बहुत संभव है। दूसरा, ज्यादा भयानक लक्षण तो नहीं है, जैसे कि पेशाब में खून आना, पस आना, ये सब चीजों को देखना पड़ता है। उसी जगह पर ही निर्धारित है कि कहीं और फैल गया है। अगर वो दूसरे ऑर्गन्स में फैलता है तो हमको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। कहीं आसपास के अंगों में तो नहीं फैला, जैसे ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सब के में अगर वो आग फैलता है तो हम कैंसर के बारे में सोचते हैं। अब हमने किया था इलाज, क्या इलाज इसमें हो सकता है। इसमें से हम कीमो, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी और ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने और भी बहुत सी अभिव्यक्तियां उत्पन्न की हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जो कि इतनी महंगी है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आखिरी प्रश्न है, इसका भविष्य क्या है। सबसे पहले बात है बीमारी का पता लगना। मैंने बार बार कहा है, जितनी जल्दी में इसके बारे में पता लगता है, उतना ही जो इलाज है वो आसान है और उससे जल्दी ठीक होने का भी विचार रहता है। हर तरह के कैंसर में ये दो चीजें बहुत महत्व रखती हैं, एक तो उसका बीमारी का पता लगना और उसका जल्दी पता लगना। ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें मृत्यु की आशंका सबसे कम है। याद रहे, समय पर इलाज और आपकी सतर्कता और 50 की उम्र के बाद विशेषज्ञ से निरीक्षण आपको एक लंबी और खुशहाल जीवन जीना का मौका देगा। अब मैं आपको कुछ ICS के बारे में बताती हूँ। ICS का डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड पर स्थित है, जहाँ से सोमवार से शुक्रवार 9 से 12 बजे तक बहुत कम दामों में डॉक्टर नाक, कान, मुंह और छाती का निरीक्षण करते हैं। छाती का एक्सरे, पैप स्मियर, स्तन की जांच आदि भी की जाती है। प्रोस्टेट भी देखा जाता है।

0: वो खाली टेस्ट से नहीं, वो खाली डॉक्टर लोग हाथ से उसका पता लगा लेते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो PSA की बात भी करते हैं और आपका यूरिनरी टेस्ट भी करवाते हैं। नवंबर के महीने में सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का, और अप्रैल में आदमियों के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए निःशुल्क निरीक्षण भी किया जाता है। कृपया अपॉइंटमेंट के लिए हमारे डिटेक्शन सेंटर का नंबर नोट करें, वे है 2371-6941। मैं फिर से कहती हूँ 2371-6941। यहाँ 10 से 12 बजे तक यह हमारा सेंटर खुला होता है। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है 9910516562, यानी के 9910516562, और इस पर आप रिंग करके कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। याद रहे कि हर समय ऐसे नंबर पे फोन मत करें, उसका सेम एक निर्धारित समय है 10 से 4 बजे तक। ICS गांवों, बस्तियों और कॉरपोरेट्स में डिटेक्शन कैंप्स लगाती है और भिन्न भिन्न कैंसर के बारे में बताती है। स्कूलों और कॉलेजों में बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। यह सब कार्य निःशुल्क ही किया जाता है। इसमें डॉक्टर आदमियों का प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी निरीक्षण करते हैं। ICS ने गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के साथ मिलकर एक सेल्फ लर्निंग कोर्स भी किया है। ICS ने एक मोबाइल एप्लीकेशन राइज अगेंस्ट कैंसर के नाम से तैयार किया है, जो आप एंड्रॉयड फोन पर जाकर उसको उतार सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उतार सकते हैं। इसमें हर प्रकार के कैंसरों के बारे में, उनके लक्षण, इलाज और मानसिक निदान के बारे में पूरी पूरी जानकारी डॉक्टर ने भी दी है। ये एप्लीकेशन 5 भाषाओं में विकसित किया गया है, इंग्लिश, हिंदी, कनाडा, बंगाली और मराठी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरी भाषाओं में भी इसको विकसित किया जाए। आशा है आपको आज की इस चर्चा से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज का हमारा ये संदेश है कि आप सावधान रहें और अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में चौकन्ने रहें। आपको ही अपने शरीर के बारे में पता है, क्योंकि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर पकड़े जाने पर इसका 100% निदान ढूंढा जा सकता है। आप इस बीमारी में अकेले नहीं हैं। ICS हर प्रकार से आपकी सहायता करने में तत्पर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। खुश रहें और सतर्क रहें, यही मेरी प्रार्थना है।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस।
3: FM Rainbow 102.6।
2: जी हाँ, और वक्त आ गया है आपके पसंदीदा गानों का। जी हाँ, बिल्कुल बजाने को तैयार हैं हम आपके पसंदीदा गाने किस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है वही जाना पहचाना, मेरा वाला सॉन्ग, या ये कहें आपके वाला सॉन्ग या त्वाड़े वाला सॉन्ग। जनाब तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी से, अपने फ़ोन जो है अपने हाथ में रख लीजिए और व्हाट्सएप खोल कर 9868107070 पर अपना मैसेज लिखकर भेज दीजिए अपने नाम के साथ, कौन सा गाना है सुनने का आपका मन आज। मैं हूँ आपके साथ कौन, जी हाँ मैं हूँ वही आपकी प्यारी प्यारी आरजे रॉकिंग रश्मि। और आई थिंक हमारे जो लिसनर्स हैं ना वो भी बहुत प्यारे।

हैं और ख़ासतौर पर वो जो रेगुलर हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, जो कि बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी मेरे पास पहुँच चुके हैं. जब हमारा स्पॉन्सर प्रोग्राम चल रहा था ना, तो हमारे लिसनर्स ने लगातार अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे हमारे पास मैसेजेस भेजने के लिए. तो चलिए जल्दी जल्दी मैं उन सबके नाम पढ़ देती हूँ जिन लोगों ने अभी तक मुझे मैसेज किया है, और कुछ कुछ गाना उन्होंने चाहा भी है. तो सबसे पहले मैसेज आया है कविता का, देवभूमि उत्तराखंड से. बेवफा सनम का गाना सुनना चाहती हैं. कविता जी, इतना अच्छा खूबसूरत सा मौसम है और क्यों सैड सॉन्ग में लगी हुई हैं आप? कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गाना और आपका मूड बिल्कुल फ्रेश कर देंगे. पद्मावत का गाना सुनना चाहते हैं. उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश. सर जी, यदि आपने मेरा बॉलीवुड ट्रेल सुना होगा ना, तो सबसे पहला सॉन्ग मैंने इसी फिल्म का और यही वाला गीत बजाया था. इसके अलावा मेरठ कैंट से बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने लिस्ट भेजी है. चलिए नाम मैं फिर पढ़ूंगी इनका. सुखलाल बालाजी लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल से. साथ में ये है नौशाद चौधरी, कहाँ से लिखा है इन्होंने, मंडोली दिल्ली से. इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आने शुरू हो गए हैं. तो बस सबसे पहले मैं जो गीत ले रही हूँ ना, आज के मौसम को देखते हुए, बहुत खूबसूरत मौसम है और इसकी रिक्वेस्ट हमें भेजी है अमरदीप कुमार ने. कुप्पम पुट्टी, माफ़ कीजिएगा, कुप्पम पट्टी जलाकंडा पुरम बाज़ार सेलम ज़िला तमिलनाडु से. और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ख़ास तौर पे आज के मौसम पर, या ये कहेंगे पिछले कुछ दिनों के मौसम पर ना, बिल्कुल फिट बैठ रहा है.

जी हाँ, मन तो बिल्कुल नहीं है कि इस गाने को छोड़ दूं बीच में, लेकिन चूंकि लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत सारे लिसनर्स हैं जो चाहते हैं अपने पसंद का गाना सुनना, तो आज थोड़ा थोड़ा गाना सुनेंगे लेकिन साथ साथ करेंगे बातें बहुत सारी। एक मैसेज आया है पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से, मेरा वाला सॉन्ग में आलोक नाथ जी को बहुत ही जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो सर जी, आई थिंक उन तक आपकी शुभकामनाएं पहुंच गई हैं, और कोई भी गाना सुनना चाहते हैं साथ साथ। सौरभ अनेजा का मैसेज आया है, हमेशा की तरह है, कहते हैं मेरी कोई चॉइस नहीं है बट मेरा नाम ले लीजिए। कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय का आया है

मैसेज, और इन्होंने कहा है कि सब कुशल मंगल फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। सर, मैंने बहुत कोशिश की कि गाना मुझे मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली गाना मुझे नहीं मिला है, तो आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा गाना ज़रूर बताइएगा जो मैं ढूंढ कर आपके लिए ज़रूर बजा सकूँ। राइट, इस वक्त एक और हमारे मैसेजेस लिस्ट में आ रहे हैं लगातार जो मैसेजेस, उनमें जो नेक्स्ट गाना मैं सुनवाने वाली हूँ वो किसकी पसंद का है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो बहुत लंबी सारी लिस्ट है ना, उनके मुझे लगता है नाम जरूर मैं लेना चाहती हूँ। सबसे पहले जिनका मैसेज आया है मुझ तक, ये कौन है? ये है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। इनके साथ में एक और है विशाल शाक्य फतेहगढ़ से, इन्होंने लिखा है ओके, आज मतलब सबको बारिश वाले गाने ही सुनने हैं। हाँ ठीक है, बारिश है, मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या और भी कोई गाना आप सुनना चाहेंगे? बताइए बताइए। हमारे पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट आई थी, लिखने वाले थे ये कहाँ से, ये थे मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारी लिस्ट बनाई है इन्होंने, लेकिन हाँ उनमें एक गाना मुझे लगा है क्योंकि मौसम आज खूबसूरत है, तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं और एक बार फिर से आऊँगी आपके लिए लेकर मेरा वाला सॉन्ग। लिखते रहिए अपनी पसंद के गीत। हाँ

वेल, इनका मन यदि कीचड़ में फिसल जाने को है, रपट जाने को, तो उन्हें करने दीजिए, लेकिन हम तो मजे लेंगे गानों के और साथ साथ गाने के बहाने इस बारिश के मौसम के, है ना। यदि आपने अभी अभी हमारा प्रोग्राम ट्यून किया है तो आपको बता दूं 9868107070 है, 70 हमारा नंबर है, जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी चॉइस का गाना सुन सकते हैं, बता सकते हैं हमें अपनी चॉइस। तो जल्दी से लिख लीजिए, अपनी अपनी चॉइस बना लीजिए। मैं आपको फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर ले जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
4: पता का चाय गजब का स्वाद।
5: एक बार फिर से मेरा वाला सॉन्ग में आप सभी का स्वागत। मैसेज आया है ओखला संगम विहार दिल्ली से, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। इसके अलावा एक मैसेज और आया है, ये कौन है, इनका नाम है कासगंज से लिख रहे हैं मास्टर राधेश्याम शाक्य जी, और चाहते हैं गुंडागर्दी फिल्म का एक गाना सुनना। चूँकि सर जी मैंने गाना ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे कभी किसी प्रोग्राम में ये गाना यदि मुझे मिल जाता है तो डेफिनेटली बजाऊंगी। एमडी साबिर का मैसेज आया है, माफ़ कीजिएगा, एमडी साबिर का मैसेज आया है नोएडा से। और इसके अलावा ये कौन है, ये है मुकेश कश्यप जी, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। लिख रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से। और इसके अलावा एक मैसेज और आया है, ये कौन है, ये है ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से, और काफ़ी लंबी लिस्ट है इनकी। और ये है दुर्गेश नागनपुरे और राधेश्याम नागनपुरे, और साथ साथ इनका होली चौक से, सर जी मैंने पहले ही आपके यहाँ मैसेज पढ़ दिया है, कार्ड से मोहम्मद फुरकान का मैसेज आया है, और स्वागत कर रहे हैं मेरा, थैंक यू सो मच सर, इस प्रोग्राम में काफ़ी समय के बाद मुलाकात हो रही है, बिल्कुल आपने सही कहा। ऋषिकेश से मैसेज आया है पुनीत का, और साथ साथ एक मैसेज आया है हम तक जोया का मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, और ये गाना सुनना चाहते हैं रॉकी फिल्म से। तो सर जी रॉकी का ये गीत आपके लिए लेकर आई हूँ मैं यहाँ मेरा वाला सॉन्ग में।

0: जी हाँ, रॉकी फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के बाद एक छोटा सा ब्रेक इंतजार कर रहा है आपका भी और मेरा भी। तो चलिए ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बिलोली जिला कासगंज से सत्येंद्र सिंह का मैसेज आया है, विजयपत का गाना सुनना चाहते हैं। और साथ साथ इस्लाम सलमानी ग्राम बाजितपुर जिला बदायूं, रेशमा मंतशा मुस्कान और अदनान और अरमान, ये सारे के सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी शिद्दत से प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और साथ साथ मैसेज भी कर रहे हैं। मनोज सिंह ने लाजवंती गार्डन का से इन्होंने मैसेज किया है और मौसम के हिसाब से गाना है। तो सर जी, मौसम के हिसाब से तो काफ़ी सारे गाने बच चुके हैं ना, कोई और गाना भी बताइए। मोहरा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। ये कौन है? कविता जी टिहरी गढ़वाल से इनका मैसेज आया है। इसके अलावा एक मैसेज किसका है, उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन कहाँ लिखा है वो ढूंढ लेते हैं। इनका कहना है कि आज ही हमें देख भी रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन ये लिखने वाले हैं कहाँ से, जनकपुरी से इनका मैसेज आया है। एक और मैसेज आया है, लिखने वाले हैं कस्बा गनौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया ताहिरा, ऊपरकोट बुलंद शहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान अरजान और साथ में पूरा का पूरा अब्बासी परिवार। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है भगवती जी का नई दिल्ली से, और ये कौन है, ये है मेरा भी नाम शामिल कर लीजिए। पंकज जी, आपका नाम मैं ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ, अमरावती से आपका मैसेज आया था। लेकिन साथ साथ हमारे पास एक मैसेज और आया है, ये कौन है, इन्होंने लिखा है पद्मपुर ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, और ये चाहते हैं कौन सा गाना सुनना। बहुत खूबसूरत सा ट्रैक है, किशोर कुमार की आवाज़ में है, नहीं नहीं किशोर कुमार है या मोहम्मद रफ़ी है, चलिए आप बताइए कि कौन से सिंगर हैं हमारे, हम किसी से कम नहीं मूवी का ट्रैक है और गाना कौन सा है।

आसाम से मैसेज आया है हितेंद्र दास का, कहते हैं किसी भी गाने के साथ नाम शामिल कर लीजिए। तो सर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यार से हमें अपना नाम लिखकर भेजा। भगवती जी ने बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं, नई दिल्ली से इनका मैसेज आया है। इसके अलावा एक मैसेज आया है मध्य प्रदेश से, ए के पांडे जिला पन्ना, और जिला पन्ना मध्य प्रदेश से ए के पांडे और हर्षवर्धन पांडे का, और ये कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। ओके, ये गाना सुनना चाहते हैं, मैंने पढ़ लिया है सर बिल्कुल आपका नाम। और इसके अलावा एक मैसेज आया है, ये है ओके, इसकी कच्चे धागे फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से कांता खंडेलवाल। तो कांता जी आज तो ये गाना मैं नहीं बजा पाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी मतलब लंबा गाना है, फिर किसी दिन मौका मिलेगा ज़रूर बजाएंगे। सीता त्यागी, अरिंजय त्यागी, हरमान त्यागी, मायरा त्यागी, सोनिया और प्रदीप त्यागी का मैसेज आया है दिल्ली के द्वारका जगह से। इसके साथ साथ एक मैसेज और आया है, ये है कौन, रवि लिख रहे हैं मेरठ से। और साथ साथ हमारे पास एक मैसेज किसका आया था, ये थे हमारे पास एक हमारे लिसनर से, कहते कई बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और आपने मेरा नाम तो पढ़ लिया लेकिन मेरा गाना नहीं बजाया। विकास शाक्य फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश से, और कहते हैं मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है सर, मतलब एक मक्खन लगाने वाली जो बात है ना वो आपने कह दी है, तो चलिए आज आपका ये मक्खन मैं ले लेती हूँ और आपकी पसंद का ये गाना सुनाती हूँ। हालांकि गाना बहुत लंबा है लेकिन लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़रूर बजाऊँगी। वजह कितनी, इतनी कि मुझे भी ये गाना बहुत पसंद।

डॉली, बिल्कुल गलत बात है आपने जिस तरह से लिखा है ना, मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी। डॉली लिख रही हैं, सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है कि हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में था चांद मेरा दिल। बिल्कुल सही आपने कहा कि उनकी आवाज़ में ही था और शो बहुत अच्छा कर रही हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन साथ साथ इन्होंने मुझे बोला है कि यदि ये गाना मैंने बीच में काटा तो मुझे पाप लग सकता है। भाई पाप बिल्कुल नहीं लगेगा, जो आपके जैसे प्यारे प्यारे लिसनर्स मेरे साथ में है ना, तो वो बिल्कुल भी मुझे पाप नहीं लगने देंगे, क्योंकि जब मैं उनकी पसंद का कोई और अगला गाना बजाऊँगी ना, तो डेफिनेटली उन्हें अच्छा लगेगा। आज बहुत सुंदर सुंदर गानों की लिस्ट होने वाली है, आपका शो बहुत सुना जाता है, थैंक यू सो मच सर। लिखने वाले हैं तनुज रमन वार्ष्णे, प्रवल रमन वार्ष्णे, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। सर आपने एक्चुअल में मेरा दिन बना दिया है। और साथ साथ ये कौन है, ये है बागेश्वर निषाद, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, गोरखपुर यूपी से लिख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको गाना भी पसंद आ रहा है। और ये लिखा है अमरावती से पंकज जी का मैसेज आया है कि हम किसी से कम नहीं मूवी का गाना है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, बिल्कुल सही आपने पहचाना सर। और इसके अलावा कमलेश मुकुल, सचिन और दीपांशु का मैसेज आया है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक इन्होंने सुनना चाहा है और मैं बिल्कुल बजाने वाली हूँ। लेकिन साथ साथ मेरे कुछ एक लिसनर्स और हैं जिनके नाम मैंने नहीं पढ़े थे, हालांकि मैंने बता दिया था कि जनकपुरी नई दिल्ली से इनका मैसेज आया था। और ये थे लिखने वाले प्रदीप सलूजा, तो प्रदीप जी आपका बिल्कुल मैंने नाम देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने ज़रूर आपका नाम बोला है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी लिख रहे हैं, शांतिपथ सोनी, शांतिनगर सोनीपत से, माफ़ कीजिएगा, हमारे रेगुलर लिसनर हैं तो, लेकिन थोड़ी सी गलती कभी कभी माफ़ कर सकते हैं ना सर, बिल्कुल करेंगे। बोल बच्चन का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं और साथ साथ बता रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच सर। राम बाबू जी भोपाल से इनका मैसेज

0: आया है, और ये कौन है, ये भी बड़ी लंबी लिस्ट है, मैना, कनिक, मयन, सीमा, अनीता, सोनिया, वंशिका, शिवालिका, कृषिका और कार्तिक, और ये सब मुझे मैसेज कर रहे हैं रोहिणी के, अदली के रोहिणी से, और साथ साथ बहुत सारा प्यार भेजा है। तो थैंक यू सो मच सर, आप सभी का, आप सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स का बहुत प्यारा मैसेज भरा, प्यार भरा मैसेज जो है मुझे मिल गया है। इसके अलावा दिल्ली के करण विहार से मैसेज आया है सत्येंद्र मौर्य का, और अब जो गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ वो मैंने नाम उनके ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ, तो चलिए उनकी पसंद का गाना सुनते हैं। फिल्म है अनोखी अदा, और ये गाना ना सच मानिए मुझे भी बहुत पसंद है, तो ये वही सॉन्ग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किशोर कुमार की आवाज़ में। एंजॉय कीजिए और वापस आइए मेरे यानी कि अपनी आरजे दोस्त रॉकिंग रश्मि के पास।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिन्हें आज मेरा प्रोग्राम काफ़ी पसंद आ रहा है, और तो उम्मीद करती हूँ कि बिंदास बोल में भी थोड़ा सा इसी तरह के मैसेजेस आप ज़रूर भेजेंगे. और मेरे प्रोग्राम को पसंद किया है तो डेफिनेटली उस बात को आगे तक भी पहुँचाएँगे. हमारे एक लिसनर हैं जिनका नाम लेना मैं शायद भूल गई हूँ, रॉक स्टार का ये गाना सुनना चाहते थे, लेकिन सर रॉक स्टार का ये गाना मेरे पास बिल्कुल नहीं है. राजस्थान की हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी नागौर से इनका मैसेज आया है. कृष्णा इंदा और बिलाल अहमद हैं. इसके अलावा डॉली ने एक बार फिर से कहा है कि मजाक था. बिल्कुल जनाब, मैं जानती हूँ डॉली कि आपने मजाक ही किया है, लेकिन आपका मजाक बड़ा प्यारा लगा. ऐसा मजाक तो कर सकती हैं आप. रंजीत मस्ताना का मैसेज आया है, तहकीकात फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं. मैसेज राय

0: रेली से लिख रहे हैं। इसके अलावा ये कौन है, इनका नाम है ओके वरुण वार्ष्णेय, अलीगढ़ के कौरियागंज से इनका मैसेज आया है। और गाना के साथ साथ ना इनको गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लग रही है। तो सर थैंक यू सो मच सर कि आज आपको मेरे प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है और जो गाना आपने सुनना चाहा है मैं कोशिश कर रही हूँ, यदि वो मिल जाता है मुझे तो मैं ज़रूर बजाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज काफ़ी गाने ऐसे रहे जो हमने सावन के ऊपर कह लीजिए या झूलों पे कह लीजिए है ना, और बारिश के ऊपर हमने गाने बजाए हैं। तो कोशिश कर रही हूँ कि उसी तरह का आपकी पसंद का ये गाना मुझे मिल जाए, हालांकि मेरी प्रेफरेंस थी कि आज ज़्यादा हो गए हैं इसी तरह के गाने है ना। तो आपने गाना सुना चाहे आया झूम के बसंत राइट, तो वो गाना तो मुझे मिल नहीं रहा है, हालांकि मैं सोच रही हूँ कई बार मैं बजा चुकी हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ। इसके अलावा कुछ एक मैसेजेस और आए हैं हम तक, तो मैं जल्दी जल्दी उनका नाम लेना चाहती हूँ। और हम तो ओके थैंक यू सो मच सर जो आपने लिखा है प्रदीप जी, बिल्कुल मैंने पढ़ लिया है उसे। और इसके अलावा ये किसका मैसेज था, सुदर्शन मुखी अनीता मुखी का मैसेज आया था और इन्होंने भी बहुत सारे गानों की चॉइस भेजी थी, लेकिन अब चलते चलते चूँकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है मेरे पास, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से हमारे साथ रहिएगा। हमारा प्रोग्राम होगा आशियाना और ज्योतिका रहेंगी आपके साथ। फिलहाल रश्मि को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

ये हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश के पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए सम्मान नागरिक संहिता को मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। और खेलों में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मार्सेलो अरेवालो और जेलेना ओस्टापेंको की जोड़ी ने विमिल्डन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीत लिया है। और ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका। स्वागत है आप सबका रेनबो डेस्टिनेशन में, जहां हर एपिसोड में हम निकलते हैं एक नए सफर पर। आज का सफर हमें ले जा रहा है इंडिया के उस कोने में जिसे प्यार से कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, केरला। सोचिए, सुबह की वो हल्की सी प्यारी सी बारिश, कोकोनट ट्रीज हवा में झूम रहे हैं, एक तरफ शांत बैक वाटर्स और दूसरी तरफ अरेबियन सी की लहरों की आवाज, कहीं दूर चाय के बाग, कहीं कथकली के रंग और हर मोड़ पर नेचर का एक प्यारा सा नया सरप्राइज। कहते हैं कि केरला सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है जहां लाइफ थोड़ी स्लो

स्लो हो जाती है और हर पल को जीने का मन करता है। तो सीट बेल्ट की जरूरत तो नहीं है, बस इमेजिनेशन को फ्री छोड़ दीजिए ना। आज चलते हैं केरला की खूबसूरत वादियों में।

अनुपम रॉय फ्रॉम द मूवी पीकू। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ गाने सुनते हैं तो मन करता है सच्ची में कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं आपके लिए एक और वजह लेकर के आई हूँ आज। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका। देखिए, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ केरला की। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि केरला आखिर पहुंचा कैसे जाए। देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर के आसपास, तो कोची, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड़े के लिए डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ्लाइट्स इजीली मिल जाते हैं। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से तो केरला की कनेक्टिविटी और भी अच्छी है, फ्लाइट्स भी काफी फ्रीक्वेंट है। जो लोग

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: पताका चाय, गजब का स्वाद।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका। देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि आप जब आंख बंद करते हैं और कहीं घूमने का प्लान बनाना चाहते हैं तो वो ऐसी कौन सी जगह है जो आपके जहन में आती है? अगर आप ब्लैंक हैं और अगर आपके दिमाग में अभी कोई जगह नहीं आई है तो मैं आपको थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। जी हाँ, आज हम रेनबो डेस्टिनेशन में बात कर रहे हैं केरला की। देखिए, केरला वैसे तो साल भर खूबसूरत लगता है लेकिन अक्टूबर से मार्च का जो ये वेदर होता है साइटसीइंग के लिए सबसे कम्फर्टेबल माना जाता है। अगर आपको मानसून और ग्रीनरी पसंद हो तो जून से अगस्त भी एक मैजिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, स्पेशली आयुर्वेदा रिट्रीट्स के लिए। और अगर आपके मन में है कि वहां जाकर हम क्या करें, क्या देखें, तो मैं बताती हूं ना। देखिए, मुन्नार के वो बहुत ही लैविश ब्यूटीफुल ग्रीन टी गार्डन्स, एलपी की फेमस हाउस बोट राइड, कोवलम के बीचेस और वहां की जो वाइल्ड लाइफ है ना, उसका क्या ही कहना। कोची का फोर्ट एरिया और चाइनीज फिशिंग नेट्स आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और अगर नेचर लवर है तो वायनाड भी जरूर इंक्लूड करिएगा। हर जगह का अपना अलग मूड है और इसी वजह से केरला हर ट्रैवलर को अपना सा लगता है। प्लान करिए ना, मैंने तो बता दिया अच्छा मौसम कब है।

देखिए, मैंने तो आपको कहा था ना कि मंजिल से बेहतर लगेगा रास्ता अगर आपने कोंकण रेलवे का वो रूट ट्राई कर लिया। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका। और मैं, जैसा अभी मैंने अभी कहा कि मैं बात कर रही हूँ केरला की। देखिए, केरला के जो फ्लेवर्स हैं उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। यहाँ का खाना सिंपल भी है और अनफॉरगेटेबल है। बनाना लीफ पर सर्व होने वाली ट्रेडिशनल जो केरला की सद्या है, एक एक्सपीरियंस। सी फूड लवर्स के लिए फिश करी, प्रॉन करी और करीमीन पोली चट्टू मस्ट ट्राई है वहां पे। तो ब्रेकफास्ट में अप्पम, पुट्टू और इडलियम, है ना, स्टू का टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा आपको वहां पर। अगर चाय के साथ कुछ स्नैक चाहिए तो बनाना चिप्स को तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, कोकोनट यहां सिर्फ इंग्रेडिएंट नहीं है, ऑलमोस्ट हर डिश की जान है।

देखिए, अगर आप खाने के साथ साथ केरला में आराम कर रहे हैं तो आराम के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि शॉपिंग को बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ से ऑथेंटिक स्पाइसेस, पेपर, कार्डमम, सिनेमन घर जरूर ले जाइएगा। कसावू साड़ीज अपनी एलिगेंट गोल्डन बॉर्डर के लिए दुनिया भर में फेमस है। मम्मी के लिए, बहन के लिए या अपनी वाइफ के लिए ले जाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। आयुर्वेदिक ऑयल्स, हैंडमेड सोप्स, कॉयर प्रोडक्ट्स और वुडन हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत पॉपुलर सुविनियर्स हैं यहाँ। और अगर मौका मिले तो कथकली या मोहिनी अट्टम का लाइव परफॉर्मेंस अगर आपने मिस कर दिया तो आप बहुत रिग्रेट करेंगे। यहाँ कल्चर सिर्फ म्यूजियम्स में नहीं, लोगों की मुस्कान और रोज की जिंदगी में आपको दिखता है।

देखिए, केरला ट्रिप को और मेमोरेबल बनाने के लिए कुछ छोटी सी टिप्स आपको बताती हूँ। कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स जरूर रखिएगा। रिलीजियस प्लेसेस पर डिसेंट ड्रेसिंग का ध्यान रखिएगा। हाउसबोट स्टे अगर प्लान कर रहे हैं तो एडवांस बुकिंग कर लीजिएगा। UPI हर जगह ऑलमोस्ट यूज हो ही जाता है। और सबसे जरूरी, केरला को जल्दी जल्दी कवर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसको सुकून से एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ आज का हमारा केरला सफर यहीं तक। उम्मीद है आज के रेनबो डेस्टिनेशन ने आपको भी गॉड्स ओन कंट्री की एक छोटी सी झलक जरूर दिखाई होगी। अगर आप केरला जा चुके हैं तो उसकी यादें फिर से ताजा हो गई होंगी, और अगर अभी तक नहीं गए तो शायद आज के इस एपिसोड ने आपको थोड़ी सी प्रेरणा जरूर दी होगी। मैं ज्योतिका लेती हूं आपसे इजाजत। वक्त हो चला है हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का। इस धुन के उस पार आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
2: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण।

0: बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता

0: अरे भागो
1: भागो जाओगे अरे भागो अरे अरे सिपाही आ गए अरे अरे भागो जाओगे अरे
0: भागो भागो भागो
1: चुप रहो चुप रहो यहां यहां नहीं मिलेगा भागो भागो
0: अरे मैंने कुछ नहीं किया
2: भागो आया काबू
3: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर, बढ़े चलो, बढ़े

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया, सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर,

0: आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो, ये सिकंदर का आदेश है।
2: जी सम्राट, ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा,
4: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
5: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
5: हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें
6: मैसिडोनिया चलो,
5: वापस चलो
1: सम्राट। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
7: सबर करो साथियों।
2: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो
1: दुष्टों को, भाग मेरे पास, पकड़ो, पकड़ो इन्हें।
2: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
3: महाराज चंद्रगुप्त आप?
2: हाँ
4: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
2: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
5: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
2: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
6: धन्य हो आचार्य,
7: धन्य हो आचार्य, धन्य हो आचार्य,
8: धन्य हो
7: आचार्य,
8: धन्य हो।
9: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक

0: बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: FM Dragoban
4: 103 MHz
3: News, music and entertainment.
4: This is FM Dragoban
3: FM 103 MHz.
5: You're now tuning into Kashfani from Dragoban at 103 MHz.
3: FM Dragoban
4: 103 MHz.
3: News, music and entertainment.
4: This is FM Dragoban
3: FM 103 MHz.
5: Good evening, this is Akashvani Kohima, the news headlines. Governor Nandkishore Yadav visits Ayush Hospital at Chedama, reviews hospital functioning and interacted with doctors, nurses, paramedical staff and other officials. Nagar Students Federation appeals President Drupadi Murmu to intervene and ensure justice for 6 slain Nagar civilians, submits memorandum through Governor Yadav. PHED Minister Jacob Zimomi inaugurates newly constructed Public Health Engineering Department Executive Engineering Divisional Office at Newland. Health Department conducts one-day state-level

0: Yes, listeners, we have the next call, so let's see who it is. Hello, good evening.
1: Good evening, sir.
0: Good evening. Who am I speaking to?
1: I am Amal Basmitari from Rangapara Sunitura Sound.
0: Amal, how are you?
1: I'm fine. And you?
0: I'm fine, thank you. Or, batao, aaj ka kya haal hai?
1: जो आज का हाल तो क्या कहना है, गर्मी है सर, सुबह को बारिश हुआ था, बादल भी है, फिर भी बहुत गर्मी चल रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है।
0: अच्छा अच्छा, तो लेकिन शाम में थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना?
1: हाँ हाँ, शाम में तो ऐसे 20 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा, और टाइम में से 4 बजे से 4:30 बजे से 41 डिग्री सेल्सियस चलेगा।
0: और आज कहीं भी
1: 6 बजे से 28 डिग्री सेल्सियस और रात के 8 बजे से 26 डिग्री सेल्सियस चलेगा। 26 डिग्री से कम नहीं होगा।
0: अच्छा, तो आज का क्या प्लान है, इवनिंग का क्या प्लान है?
1: जो इवनिंग का तो वैसे प्रोग्राम में जुड़े रहे के अच्छे से गाना सुनने का प्लान है।
0: हाँ, हिंदी फिल्म के भी फोन इन है ना बाद में?
1: जी जी जी जी, बताए। वेस्ट म्यूजिक प्रोग्राम में बर्बी गर्ल गाना तो सुनना चाहता था।
0: चलो, एक्वा का नाम
1: बर्बी गर्ल।
0: डेडिकेशन है कि नहीं?
1: डेडिकेशन है
0: तो बता दीजिए।
1: सबसे पहले डेडिकेशन रहेगा, एंड जिस तम सगबन का पुराना लिसनर रखुबेले मेटा और केबी क्या था, हाँ केबी लेको मेटा एंड चुबा के जमीर, अकुम जमीर, तालीला जमीर, एंड चोपी ब्रदर्स, कैटमन एंड नेटो, अटोली चिली टोली अटमी, इसकटा अटमी, एंड अखोजो, एंड फ्रॉम त्रिपुरा एंड अविनाश टैली एंड मंदिरा गोवा फ्रॉम रमना एंड बिमल बसुमतारी, भाईकन मंदार, रमेश पात्र एंड अपर्व पात्र, चुनिता बसुमतारी, अस्मिता बसुमतारी एंड प्रिया बड़ो, ऑल द लवली लिसनर एंड स्पेशली टू यू सर।
0: ओके, थैंक यू। और अमल, आप ये नाम सब याद में रहते हैं?
1: जी जी जी, याद में रहते हैं।
0: आपका याददाश्त बहुत अच्छे है तो?
1: जी जी जी जी, उस लोग के साथ मेरे हर लोग डेडिकेशन में जुड़ता हो, इसलिए उन लोग का नाम मैं भूल नहीं सकता है।
0: अच्छा,

0: बस और तो कल एफएम शेखर में नहीं आया था दिन भर, और इसने इसके बीच में बहुत मनपसंद प्रोग्राम फोन इन प्रोग्राम भी था, लेकिन इसको सुन नहीं पा रहा है। मन में कितना दुख आया है था, लेकिन खाना भी नहीं खाया था मैं कल दिन को।
1: अरे तो आज सुनकर बात बढ़िया से खा लीजिए।
0: जी जी जी जी आज तो आपसे बात होते तो बहुत खुश हो जाएगा, और हिंदी प्रोग्राम में तो कॉल लग जाएगा तो और भी खुश हो जाएगा।
1: और आप रेडियो कैसे सुनते हैं, रेडियो से या मोबाइल से या दिरिये?
0: जी रेडियो से वो भी सुन सकता है जो मोबाइल पर एफएम रहता है ना, जो इस पे भी सुनता हो।
1: और आप मोबाइल ऐप में डाउनलोड किया कि नहीं?
0: नहीं मेरा वो स्मार्टफोन वाला नहीं है, कीपैड वाला फोन है। मेरा दोस्त है और मेरे भैया का जो स्मार्टफोन है, जो कभी एफएम में सुन नहीं पाता है तो क्या मैं अपने सुनता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो अब
0: जी
1: बात करने के लिए बहुत शुक्रिया
0: जी। और आप भी हिंदी इतनी अच्छे से बात करते इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हिंदी प्रोग्राम में आके इसे टॉक कर सकता है।
1: हाँ, थोड़ा थोड़ा
0: नहीं नहीं आपका जो हिंदी जो बोलता है ना बहुत अच्छे होता है, जो पूरी आकाशवाणी एफएम प्रकरण ऐसे स्मार्ट हो गया है और ऐसे नंबर वन टॉप होने चला जा रहा है, लेकिन पूरी इंडिया से कॉल आता है, पूरी इंडिया आपके प्रोग्राम को याद करते है और सुनते है। और हेलो फॉरमेज ग्रुप में तो पूरी डिटेल्स जानकारी सभी हेलो फॉरमेज ग्रुप में डाले जाते हैं, जैसे ऐसे टाइम में ऐसे ऐसे प्रोग्राम होगा, ऐसे ऐसे एसएमएस प्रोग्राम होगा, ऐसे कॉल फोन इन प्रोग्राम होगा, इसके बारे में सब जानकारी देते ही रहते हैं हेलो फॉरमेज ग्रुप एकता ग्रुप में।
1: हाँ तो अब लिस्टनर्स आप जैसे हो तो हमारा चैनल तो नंबर वन ही होगा ना।
0: हाँ। मुंबई का जो विविध भारती जो जैसा हो गया।
1: हाँ तो अबल आप I'll play your song that you have requested, all right?
0: Okay.
1: Okay, so thank you so much for calling.
0: Okay, thanks for listening. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Wonderful evening.
1: All right, that was Amul, and it was a pleasure talking to him. I think I will play his track right after our traffic update. That is at 3:30. So you guys stay tuned and stay connected to Akashvani FM Tracopan at 103 MHz.
2: FM Tracopan. 103 MHz. News, music and entertainment. This is FM Tracopan. FM 103 MHz.
1: This is Akashvani Koyma. The traffic update at 3:30 PM. If you're taking the route from Mongkol to BHQ Junction and you're traveling towards Nagaland Civil Secretariat, the status of traffic is moderate at northbound. And if you're traveling towards Upper Hill, the status of traffic is moderate at southbound with the alternate route at Old Minister's Hill to Jail Colony. From PHQ Junction to Major Junction, the status of traffic is moderate at northbound and the alternate route is at Paramedical to D Model to IG Road, and the status of traffic is heavy at southbound with the alternate route at Lady Miles Road. From TCP to Raza Point, the status of traffic is moderate at northbound and the alternate route is at TCP to Raza Point, and the status of traffic is heavy at southbound. You can take the alternate route at Box Cutting to NHA Gate to Census Point, from Pulpari to Kuchisay Ground to Razu Point. From Razu Point to Census Point, the status of traffic is moderate at northbound and it's heavy. Southbound, the alternate route you can take is Census Point to NHA Gate. From High School Junction to Census Point, the status of traffic is light at northbound and it's moderate at southbound with the alternate route at High School Junction to D Model Road. From NHK Junction to Census Point, the status of traffic is light, both at north and southbound, respectively. That's the traffic update. We'll continue with your Western music phone-in program, a request by Amul Basumatri, the track called Barbie Girl by Equa.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You want to go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Yes, listeners, I have to cut the track short because we have the next caller. Hello, good evening.
1: Hello, sir, namaste.
0: Namaskar, aur kaun bol rahe hai?
1: Ji, sir, hum Bimal Assam se, Bimal Basundar bol rahe hai.
0: Bimal?
1: Ji, ji, ji.
0: Bimal, Bimal, kya hal chal hai?
1: Ji, sir, theek hai, achha hai.
0: और आपको बात का टाइम भी थोड़ा सा यू नो खत्म होने वाले है तो फटाफट गाना बजा दे अब क्या
1: सर।
0: अच्छा और बाद में हिंदी फिल्म का भी फॉरेन प्रोग्राम है फॉरेन का ना
1: जी सर।
0: अच्छा तो हम
1: सुनना पड़ेगा सर, हम लोग दिल्ली सुनता हूँ ना, अच्छा लगता है, सुनना पड़ेगा।
0: अच्छा तो बिमोल हम फटाफट से ये गाना बजा देंगे आपके लिए, वी आर गोइंग टू इबिजा।
1: जी सर, सबके लिए और सब सुनने वाला सबके लिए और आपको भी।
0: अच्छा तो बिमोल बहुत शुक्रिया आप कॉल करने के लिए,
1: धन्यवाद सर।
0: अच्छा सुनकर एंजॉय कर रही, ओके बाय। All right, this is, I wanted to have a conversation with Bimal, but time break, tam khatam hole se, 4 baje tak se the program do. So before I play the last track for you guys, we are going to Ibiza by Venga Boys. I just want to say thank you guys for participating in our foreign program. Foreign igla noy, apdigan SMS request to be ekdam participate kuri de. So yes, apdigan ida bal bal listeners tak ichi kuri one last show ekdam bal bal di jaidi ko. To apdigan ida gai mon digina time digina खुदी दिवे रमान इधर फोन इन प्रोग्राम नॉले एसएमएस रिक्वेस्ट तक हम दे अब दिन पार्टिसिपेट करें मॉम एकदम खुशी पाए। सो यस मोहन आई ना स्टूडियो दे अपने अंगने गाना बजाए दिवे एकदम खुशी पाए। सो ये तो कोई ना एरो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे कनेक्टेड टू आकाशवाणी एफएम ट्रैकअपैन एट 103 मेगाहर्ट्ज। वी हैव योर न्यूज़ हेडलाइंस एंड योर ट्रैफिक अपडेट एंड वी हैव योर लोकल आर्टिस्ट फ्रॉम 4 टू 4:30 एंड योर रूरल कनेक्ट फ्रॉम 4:30 टू 4:50 And we have our Green Guardians, episode 56, and that will be followed by your Western music. So don't forget to tune in till 6. I'll be playing some metal and rock music for you guys. And again, a Kwanishna Hindi film song will be phone in program from 8 to 7:10. So don't forget to participate in that show. The number will be the same. It is 0370-224-3036. And I'll be back later in the evening from 7:30 to 8:45 with your Western music. Till then, you guys enjoy the rest of the evening. Thank you once again for participating. Enjoy the last track for the show.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to Ibiza. Ibiza.

0: FM 드래그 밴. 뉴스, 뮤직, 엔터테인먼트. FM 103 메가헤르츠.
1: Good evening, listeners. The last traffic update for today. If you're taking the route from Moncola to PSU Junction, the status of traffic is moderate on northbound and it's light at southbound. From PHQ Junction to Major Junction, the status of traffic is light at northbound and it's heavy at southbound with the alternate route at Lady Miles Road. From TCP to Raza Point, the status of traffic is moderate at northbound and the alternate route you can take is TCP to Raza Point and it's heavy at southbound with the alternate route at Pulpari to Kuchisa Ground to Raza Point. From Raza Point to Census Point, the status of traffic is moderate at northbound and it's heavy at southbound with the alternate route at Census Point to NHAK. From High School Junction to Census Point, the status of traffic is light at northbound and it's heavy at southbound with the alternate route at High School Junction to D-Model Road. From NHAK Junction to Census Point, the status of traffic is light both at north and southbound respectively. That's the last traffic update for today. Stay tuned for our Green Guardians.
2: আপনি হিমিশনা নাই নাগাল্যান্ডের সেন্সাস 2027 নিমিত্তে ঘর গিনতি কাম শুরু হয়েছে এটু জানকারি খান লবলে আছেন
3: ঘরটি থাকা দরকারি সুবিধা খান খাবলে পানি এলপিজি ইলেকট্রিসিটি স্যানিটেশন আর বাকি দরকারি জিনিস খান লাগা ডিটেলস লব
2: তৃতীয় সেন্সাস অফিস মানুহন আপনার ঘরটি আহিব ঠিকঠাক জানকারি দিবি আর ভালসে পুরা মদত করিবি
3: আপনি খান লাগা মদত বেশি দরকার আছে আমি খান লাগা সেন্সাস আমি খান লাগা ডেভেলপমেন্ট
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की
5: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया
6: बन गया बजट
5: हाँ 5000 बच गए
6: तो नई साड़ी ले ले
5: ना पिछले महीने तो ली थी एक और नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो बढ़िया जाओ भाई
7: आरबीआई कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी
9: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग तनुश्री, कैसे हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ।
1: हमारे श्रोताओं के लिए मैं बताती हूँ, मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ।
0: जी, महाराष्ट्र से।
1: जी
0: ओके, और आज कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: मैम, हम साथ साथ हैं।
0: हम साथ साथ है,
1: जी
0: देखता हूँ है कि नहीं है। हम साथ साथ, शायद मेरे पास ये नहीं है।
1: तो सिटी लाइफ।
0: सिटी लाइफ, सिटी लाइफ
1: जी
0: हो सकता है। ओके, सिटी लाइट, सिटी
1: है
0: लाइफ
1: ना?
0: नहीं है, सिटी लाइट है ना?
1: हाँ
0: सिटी लाइट ना,
1: जी,
0: सिटी लाइट हो सकता है, होना चाहिए। शायद ये भी नहीं है ना, क्या
1: तो आशिकी,
0: आशिकी है? कौन सा वाला आशिकी?
1: सासों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए
0: एक
1: आशिकी के
0: सनम
1: लिए।
0: चाहिए आशिकी के लिए, ठीक है?
1: जी।
0: ओके, और किसी का
1: नाम है
0: नाम लेना चाहूंगी आप?
1: जी मैम जी, पहले तो आप है
0: ओके ओके,
1: और
0: थैंक।

0: क्यों?
1: ओके, और मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा, भगवान
0: ओके
1: सिंह परमार जी है, राकेश जी है शिमला से, अविनाश जी है, गंगाधर सावनकर जी है, और विमल भट्टाचार्य है, अमोल भट्टाचार्य है, रमेश प्रजापति है, रमेश पात्रे है, और प्रेम सिंह सिसोदिया, इन सब के मैं साथ सुनूंगी।
0: ओके ठीक है तनुश्री, बहुत अच्छी लगा आपने कॉल किया,
1: जी
0: लग गया। लेकिन जो दो फिल्म का नाम आपने जो दिया है मेरे पास नहीं था, उसके लिए माफी चाहूंगी।
1: मैम, ये तो एक बहाना है आपसे बात करने का। मैं तो कहूंगी मैम, ये मेरा गाना है ना, आधा ही बजा
0: ओके
1: दीजिए।
0: ठीक है तब
1: एक,
0: तो,
1: हाँ, एक कॉलर को ज्यादा जोड़ दीजिए, मेरा गाना आधा ही बजा दीजिए।
0: ओके ठीक है तनुश्री, आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए। हाँ ठीक
1: ओके,
0: है,
1: बाय।
0: ओके बाय। শুনি থকা সব বিলাক প্ৰগ্ৰামটি এইবাৰ দুচৰা গীত দি আছে আশিকি ফিল্মত গাই আছে অনুৰাধা পঠোৱাল আৰু উদিত নাৰায়ণ। আৰু এইটো গীতটো পচন্দ কৰি কিনে অনুৰোধ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তানুশ্ৰী আৰু তাৰ পৰা এফ এম ট্ৰাকপন লগা কিছুমান সাথীবিলাক লগা নাম লৈ কিনে ডেডিকেট কৰি কিনে আছে। তো শুনি আছোঁ ৰ'ব আশিকি ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग। कौन कौन से? त्रिपुरा
1: मैं त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: से
1: जी। और मैम
0: आशुतोष।
1: से दूसरी बार
0: आशुतोष
1: मेरा
0: क्या
1: बात हो रहा है।
0: बोला?
1: आशुतोष देवनाथ।
0: देवनाथ। ओके, आज पहली
1: और
0: बार कॉल किया है आपने?
1: नहीं मैम जी, आपका साथ मेरा दूसरी बार बात हो रहा है।
0: ओके, भूल जाता है, माफी
1: तो
0: चाहूंगी।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: अच्छा
1: मैम जी, माफी का कोई बात नहीं। मेरा कॉल तो बहुत कम लगता है और हमेशा लगने से तो आपको याद रहेगा।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए, कैसे है त्रिपुरा का मौसम?
1: मैम जी, त्रिपुरा का मौसम तो ठीक ठाक नहीं है, लगातार बारिश चल रहा है और फ्लड भी हो गया है। नदी नाले, किसी का घर में, जिनका घर नीचे है उनका घर में पानी भी घुस गया है। घर छोड़ के दूसरा जगह में जाना पड़ रहा है।
0: वो तो बहुत अफसोस की बात है। फिर भी मौसम का समय में तो ऐसे ही हो जाता है सब जगह में। तब तो आज कौन सा गीत सुनने के लिए आपने कॉल किया है वो बता
1: मैम
0: दीजिए।
1: जी, आज मुझे सुना दीजिए। फिल्म का नाम है झूठा सच।
0: झूठा सच
1: जी
0: देखता हूँ। झूठा सच शायद ये नहीं है ना क्या, क्योंकि कभी भी नहीं।
1: अच्छा, ये 1984 का फिल्म है। देखिए, है कि नहीं?
0: शायद नहीं है, क्योंकि हम
1: अच्छा
0: लोग कभी भी नहीं बजाया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा और मैम जी, दूसरा फिल्म है किनारा।
0: किनारा। किनारा भी कभी भी नहीं बजाया, फिर भी मैं देखता हूँ। किनारा
1: ये
0: किनारा है, किनारा है।
1: 77।
0: 1976,
1: हाँ ऐसा ही,
0: 1976 है।
1: 76। हाँ ऐसा ही है। और मैम जी, गाना है जाने क्या सोच कर, किशोरदा की आवाज में। देखिए तो है कि
0: ओके
1: नहीं?
0: जी, बिल्कुल है। और किसी का
1: और
0: नाम लेना है आपको?
1: जी, और इस गाने को लिखा है मशहूर लिरिक्स गुलजार जी ने
0: जी,
1: और राहुल देवबर्मन जी ने सुर से सजाया इस गाने को।
0: बिल्कुल सही।
1: और मैम, मैं कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ। पहले मैम जी आप,
0: ओके, थैंक यू।
1: और नॉर्थ ईस्ट से अमल बिमल ब्रह्मचारी जी और भाईकोन मुंडा जी, और आसाम से है प्रेमजीत चक्रवर्ती।

0: जी त्रिपुरा से अविनाश शैली जी और मध्य प्रदेश से भगवान सिंह पारमार, प्रेम सिंह भैया, रमेश प्रजापति जी और रमेश पात्रो जी नॉर्थ ईस्ट से। और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेके सुनना है और मेरे धर्मपति संगीता देवनाथ भी सुनेंगे।
1: ओके ठीक है आशुतोष जी, आपने कॉल लगाया, आज तो लग गया है और आपने मांगा है किनारा फिल्म की गीत और किशोर कुमार का आवास में है। आप जितने लोग का नाम लिया है मैं पूरा विश्वास है वो लोग भी सुन रहा होंगी और बहुत खुश है सुनेगा। तो थैंक यू कॉल लगाने के लिए। होनेटा का सब बिल्ला प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत हुनी वो किशोर कुमार लगा वास्ते फिल्म से किनारा और यू गीत तो हुनी बोले मन हुई कि ना कॉल लगाई से त्रिपुरा पर आशुतोष देवनाथ और तार पर FM ट्रैकपन लगा थ्रू पर जिमान भी डोज तार बनाए रखी कि ना से तार खान के डेडिकेट करी दी कि ना से और तार लगा माइकी और हुनी थका सब बिल्ला के डेडिकेट करी दी कि ना से। तो हुनी वो किशोर कुमार लगा वास्ते फिल्म किनारा।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। बोले आपका शुभ नाम।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहेटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बोले, कौन सा गीत सुनने के लिए

0: उत्सुक हैं आप आज?
1: मेरे हमदम मेरे दोस्त हैं क्या?
0: फिल्म का नाम है वो
1: हाँ जी, हाँ
0: मेरे हमदम।
1: मेरे दोस्त।
0: ओके, देखता हूँ, हो सकता है शायद। मेरे हमदम मेरे दोस्त में कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: कौन से गाने हैं उसमें?
0: आला ये अदा, चलो साजना, चल का ये जान, हमें तो हो गया, हुई शाम उनका ना जा
1: चलो
0: कहीं।
1: चलो सजना वाला सुना
0: चलो सजना,
1: जी।
0: लता मंगेशकर का आवाज में।
1: जी
0: ओके, और नाम लेना है आपको?
1: जी सबसे पहले तो आप
0: ओके, थैंक यू।
1: और हमारे मित्र हैं भगवान सिंह परमार हैं, पूरन वर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, केसरी सिंह राजपूत हैं, मांगीलाल चंदेल हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया हैं, लोकेंद्र वर्मा हैं उज्जैन से, आशुतोष जी हैं अभी उनका लग चुका है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है, पूनम जी है कानपुर से, अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, शिवा है और विमल भस्मकारी है, अमल भस्मकारी है, गोल्डी जी है और रमेश पात्रे है और रक्कू बिल्ले मेथा, तनुश्री बिटिया है महाराष्ट्र से और प्रेम पुरुषोत्तम कुमार है जम्मू कश्मीर से।
0: ओके, ठीक है। रमेश जी, आपने फोन लगाया और आपने जो मांगा है मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट में, आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। कॉल करने के लिए थैंक यू,
1: जी धन्यवाद मैम।
0: वेलकम। हुनी ढगा सब बिलाक प्रोग्राम टे बार हुरी बो लता मंगेशकर लगा वास्ते फिल्म से मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म की गीत आरो इटू गीत पसंद करी से रमेश प्रजापति आरो तार पर FM ट्रकपन लाइक सुमन दोस्त खान के डेडिकेट करी गिना से तो हुनिया शुरू होबो मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म की गीत।
2: चलो

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: मेरा शुभ नाम है राकेश और मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला।
0: के राकेश जी कैसे हैं? बोले
1: जी बहुत अच्छे हैं, झमाझम बारिश हो रही है।
0: बारिश का मौसम है, क्या करेगा,
1: जी
0: यहाँ पे
1: जी
0: भी बहुत बारिश का मौसम चल रहा है कोहिमा में भी।
1: जी जी
0: अच्छा
1: जी जी
0: ठीक है, आप लोग सब ठीक ठाक है, कॉल लगाया, बहुत खुश हूँ। और
1: जी
0: बोलिए आज कौन सा गीत सुनना है?
1: फिल्म का नाम है दिल वाले,
0: दिल वाले में कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: उसमें गाना है मौका मिलेगा तो हम बता देंगे।
0: ओके, और किसी का नाम लेना चाहूंगी?
1: सबसे पहले तो ये आपका आपके लिए गाना डेडिकेट रहेगा
0: जी, थैंक यू।
1: और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप बोलते हैं किसी का नाम लेना चाहूंगी तो आप ऐसा बोला करो आप किसी का नाम लेना चाहोगे। आप कई बार बोलते हैं किसका नाम लेना चाहूंगा जी हिंदी में आप
0: हाँ, कभी कभार यहाँ
1: हिंदी
0: टेंशन बहुत चलता है ना, और मैं तो लिख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन बोलने के लिए यहाँ पे जो हिंदी कभी भी नहीं बोल पाता है हम लोग, इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: चलो
0: लेकिन
1: कोई नहीं, धीरे हम लोगों
0: लेकिन
1: से बात करते करते आपको
0: जी
1: आ जाएगा।
0: लेकिन आप ही है जो मेरे को सिखा देता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोले किसी का नाम लेना है तो ले लीजिए।
1: तो आपको सबसे पहले तो उसके बाद है पूरण वर्मा जयपुर राजस्थान से, अविनाश तेली है, भगवान सिंह परमार है, रुकुमिला मित्ता है और रमेश प्रजापति है और तनुश्री है हमारे महाराष्ट्र सितारा से और जितने अमल भस्मचार्य और विमल भस्मचार्य हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता और सभी के साथ एक गाना सुनना चाहूंगा।
0: ओके, राकेश जी आपने कॉल लगाया, आपने जो गीत सुनना है वो भी है, सुने और एंजॉय कीजिए। और कॉल लगाने के लिए थैंक यू
1: जी, वेलकम, धन्यवाद, बाय।
0: ओके वेलकम। হুনি থাকা সব বিল্লা ঘুরিব উদিত নারায়ণ আর অলকা ইয়াগনিক লগা বাস্তে ফিল্ম আছে দিলওয়ালে আর এই গীতটা শুনবলে মন হয়ে কিনা অল দ্য ওয়ে ফ্রম হিমাচল প্রদেশ কল লগাই কিনা মাং করেছে রাকেশ আর তারপর এফ এম ট্রাকপনলা বহুত বহুত শুনি থাকা বিলাককে আর তার লগা কিছু সাথী বিলাককে ডেডিকেট করে কিনা আছে শুনব দিলওয়ালে ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते
0: नमस्ते, बोलिए, आपका शुभ
1: जी।
0: नाम।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: हाँ,
1: जी कैसे हैं आप?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ।
1: जी फिल्म का नाम है प्यासा सावन।
0: प्यासा सावन में कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: मेघा रे मेघा मत परदेस जा।
0: प्यासा सावन, प्यासा सावन, ओके। मेघारे मेघारे,
1: जी हाँ, मेघा
0: और
1: हमारे यहाँ बरस नहीं रहे हैं, थोड़ा रुक गए हैं।
0: हाँ
1: हाँ तो उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि थोड़ा जम के बरसे। हाँ
0: अरे
1: जी, क्या सॉन्ग सुनाएंगे ना तो जरूर बरसेंगे वो।
0: अरे

0: दिखती हूँ
1: जी बिल्कुल, आप कोई मैसे सॉन्ग प्ले करेंगे ना तो सीधा उज्जैन मध्य प्रदेश में आएगा ये सॉन्ग और फिर बरसात होने लगेगी हमारे यहाँ पर।
0: ऐसे ही सोचती हैं
1: जी
0: के बोलिए, किसी का नाम लेना है तो ले लीजिए
1: जी। सबसे पहले तो मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। कोहिमा में नियमित जी आपको बताऊं जो प्रोग्राम आते हैं ना आपके वो नियमित रूप से सुनता हूँ मैं, और काफी अच्छे से कॉलर भी कॉल लगाते हैं, बातें भी करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपने बारे में जी।
0: इतना अच्छी बात बोल के मैं, मेरे चेहरा में आपने मुस्कान लाया है, तो बता दीजिए किसी का नाम लेना है तो
1: जी जैसा कि आपके लिए गाना डेडिकेट रहेगा ये।
0: ओके थैंक यू
1: जी। उसके बाद में टिंजल सर जो आते हैं ना आकाशवाणी कोहिमा में,
0: हाँ हाँ
1: हाँ जी, उनके लिए फिर है हमारे दोस्त भगवान सिंह परमार, आशुतोष अविनाश जी, इनका आशुतोष जी का भी कॉल आया था
0: जी, आया था
1: हाँ जी, सुन रहा था मैं, राकेश जी, रमेश टेलर है, तनुश्री और भाईकोन मुंडा, विमल अमल, रमेश पात्रो, और आपको बताऊं जैसे हमारा ग्रुप बना हुआ ना हेलो फरमाइश एरिया एक्टर ग्रुप, उसके सभी मेंबर के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: ओके
1: जी
0: और किसी का नाम लेना है?
1: हाँ बस आप प्ले करिए गाना और गाना पूरा बजाएगा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है।
0: ओके ठीक है, प्रेम सिंह जी आपने कॉल लगाया, आपका जो मांग किया है गीत वो भी है, आप सुनिए और आपका दोस्त लोग भी सुन के बहुत खुश होंगे, तो एंजॉय कीजिए
1: जी। थैंक यू सो मच।
0: ओके वेलकम। उन्हीं ढगा सब बेला खुनी बो प्यासा सावन फिल्म की गीत गाय से लता मंगेशकर आरो सुरेश वर्कर आरो इट गीत टू हुनी बोले मनो गिना पसंद कर उज्जैन ब्रा प्रेम सिंह सिसोदिया आरो आजि तो तार एकला हे हुनी बोले नय गिना तार लगा किसुमान दोस बिलक एफ एम ट्रैक पेन ला तार खान ला नाम भी लई गिना आसे आरो तार खान भी ट्यून इन होई गिना आसे, तो तार खान भी एन्जॉय करब और साथ साथे हुनी थका सब बिलक भी एन्जॉय करा हबो, तो हुनी बो प्यासा सावन Theme Kiki.

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बोले आपका शुभ नाम।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बोले, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, और बढ़िया हैं आप? तो बढ़िया हैं
0: जी, बिल्कुल, बहुत बहुत 100%।
1: जी दीदी, मैं पहले फिल्म का नाम बता देता हूँ, जीना तेरी गली में। और
0: जीना तेरी गली में दिखता हूँ, जीना तेरी गली में।
1: जी गाने के बोले, तेरे हम ए सनम प्यार में वादा रहा।
0: क्या बोला था?
1: तेरे हम ए सनम प्यार में वादा रहा।
0: तेरे हम ए सनम,
1: जी है दीदी।
0: है
1: जी जी
0: ओके। और किसी का नाम लेना है?
1: जी हाँ दीदी, पहले तो हमारे मित्र हैं गजराज लोधी जी हैं, शिवा लोहट जी, तनुश्री बिटिया हैं, अंजलि भस्मतारी, रमेश पात्रे जी हैं, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, आशुतोष जी हैं त्रिपुरा से, अविनाश जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकन मंडा जी, गंगाधर सावनकर जी हैं। इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, आपको भी डेलीकेट रहेगा।
0: ओके थैंक यू, लेकिन आपका नाम फिर से एक बार बता दीजिए।
1: मेरा नाम है भगवान सिंह परमार, मध्य प्रदेश से।
0: ओके भगवान सिंह परमार। ओके मैं पूरा विश्वास है कि आपने जितना लोग का नाम लिया है वो लोग
1: आपको लाइव सुन रहे हैं दीदी, सभी लाइव।
0: ओके ओके, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग सुने और एंजॉय कीजिए, और कॉल लगाने के लिए थैंक यू।
1: धन्यवाद दीदी,
0: वेलकम। होने रखा सब बिल्लाक प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत কারণে আমি এখানে কল করি কিনা অনুরোধ করেছে মধ্যপ্রদেশ পরা ভগবান সিং পরমার, আর তারপর পছন্দ করেছে জিনা তেরে গালি মে। ফিল্ম কি গেট গাইছে কুমার সানু আর অনুরাধা পচওয়াল, আর এইটু গেট তো তার লাগা বহুত বহুত সাথী বিলাকে ডেডিকেট করে দি কিনা আছে। আর শুনে থাকা সব বিলাক এইটু গীত লতে আমি এখানে প্রোগ্রাম শেষ করে দিয়া হব। এটা পর অল্প পছতে আপনাদের শুনবলে পাব নাগামিস্টে খবর, তো শুনব জিনা তেরে গলি মে ফিল্ম কি গীত।

0: ते बच्चा बुखी की ना पूरा दिन मुइना हुआ समोई दे एचआईवी और सिफिलिस करने टेस्ट करी बोला गये
1: एचआईवी थागा माँ एक जन लोगों परा एचआईवी और कंजेनिटल सिफिलिस तो तार पेट ते थागा बच्चा लोगों परा बच्चाई की ने थागी बो पारी बो
0: जुदी अपना पॉजिटिव हुई शे गुले ट्रीटमेंट लोगों पारी बो और अपना लगा पेट ते थागा बच्चा के इन्फेक्शन कन परा बच्चा बो पारी बो
1: एचआईवी टेस्ट करी बोले तो स्टेट ते थागा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरा ते फ्री परा करी बो पारी बो
0: जानकारी इतो अपना आगे दिया से नागलैंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी परा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं

0: की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश

0: तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: Pineapple Festival का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से सकेंगे।
2: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके